वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह गुरुल, वाह

तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब साय का जान होई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेडा साई, जाता पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहें।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाव सिमरओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौनिद आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियाँ

इतनी सेवा परवान कर लीजिए, कीर्तन कर दे माफी पूछा जी। सुंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप जी लड़ीवार पितरबाणी कथा राही जोड़न गए उन्होंने पास।

मार मार सरपणी, माया मारो मार कर दी फिर दी। महाराज काबू किवें आउंदी है, ध्यान दिया जे। निर्मल जल पैठी, निर्मल जल आत्मक जीवन देन वाला नाम जल। सतसंग विच जिथे आत्मक जीवन देन वाले नाम जल दी गल हुंदी है, पाठ हुंदा है, कीर्तन विचार हुंदी है, पैठी उथे बैठ जांदी है, उथे शांत हो जांदी है, उथे साडे ते असर नहीं पा सकदी। मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी, जिन तरपवन डसियले गुर प्रसाद डेठी। जिन माया ने सारियां नू डस लिया है, मैं गुरु दी कृपा नाल उनू समझ लिया। फिर पता की कहिंदे, कहिंदे सरपनी सरपनी क्या कहो पाई, पाई की माया माया लाई होई जे। जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई, जिन्हां ने सदा थिर अकाल पुरख नू संजान लिया, जान पछाण बना ली, ओ इस माया नू ही निगल जांदे ने। गल नू थोड़ा समझ आ जाए, सप तो असीं सारे डरने आ। एक्सपर्ट कहिंदे ने भी हजार सप चो सिर्फ तीन किस्म के सप ने जिन्हां दे डसन नाल बंदे दी मौत हो सकती है। 997 इस तरह के ने, उन्हां च जहर नहीं हुंदा, सिर्फ उन्हां दे डंग मारन नाल बंदा डहल के ही मर जांदा है। ते जिहड़े एक्सपर्ट ने साडे उत्थे, ओ की करदे ने, पकड़दे ने, थोड़ा जिहा अगों कट देंदे ने, थोड़ा जिहा पिछों कट देंदे ने, सप्पां नू खा जांदे ने। जिस तरह वह सप्पा नू खा जांदे ने, इस तरह जिन्हां नू माया दी समझ आई, वह थोड़ी जी अगों कट देंदे ने, थोड़ी जी पिछों कट देंदे ने, 5% अगों कट देंदे ने, 5% पिछों कट देंदे ने, 10% दसवंद बना के चंगे काम च ला देंदे ने, उन्हां दी वह माया अमृत बन जाती है। उन्हां नू जाच आ जाती किवें वरतना है। सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई। सरपनी ते छूछ आन नहीं अवरा, जे संगत विच नहीं मनुख आया, गुरु नाल नहीं जुड़िया, फिर कोई हिरदा इहदे तों बच भी नहीं सकदा। सरपनी जीती का करे जमरा, ए सरपनी तां की कीती होई, ए रब दी बनाई हुई है, ते जिहदी रब नाल सांझ बन जाए उहदे ते जोर नहीं पा सकदी। बल अबल क्या इस ते होई, अखीर च कहिंदे ने बस्ती तां बस्त शरीरा। जदों तक किसी की सुरत विच ए वसदी है, उदों तक आत्मा नू नवे शरीर च वसना पएगा। ते गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा, गुरु की कृपा दे पात्र बन जाइए, ते सुते सिद्ध ही इनू पार कर जाइदा। लेखा निबड़ जांदा, जाच आ जांदी है। नानक जिन को सतगुर मिलिया, हे भाई जिन्हां नू पूरा गुरु मिल पिया, गुरु दे बचन सुन लए, उन्हां नू जीवन विच अमल विच लै आंदा, ते तिन का लेखा निबड़िया, उन्हां दे माया वाले सारे लेखे मुक जांदे ने। यानी उन्हां नू जिंदगी दा संतुलन बनाना आ जांदा है कि मैं किन्ना संसारी धन कमाना है और किन्ना निरंकारी धन कमाना है, तां कि मैं संसार ते निरंकार, लोक ते परलोक मेरे दोवें सुहेले हो सकण, ते मैं कह सकां ये लोक सुखिए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, मां वाका अनुसार जीवन सफल हो जाए। सो ए राग आसा महला तीजा पट्टी नामक जो गुरु अमरदास दी विशेष बाणी है, ये वार्ता संपूर्ण भई। अज इनियां बेनतियां प्रवान करनियां, बचा बचिया होया समा जिवें मैनू गुरु सवारियां वल्लों प्रेरणा मिली भी अखीरले 2-3 मिनट वागुरू वागुरू भी जपया जपाया करो, वो बचे हुए 2-3 मिनट आज आपां रसना पवित्र करिए। सो सारे करो कृपा ते आखो

आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल देह नानक सारंग को होए, जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर भव भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया।

जी की फतेह। वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

हर रंग प्रभु कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध प्रभु कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभु कह सिमरन जप तप पूजा प्रभु कह सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कह सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कह सिमरन दरगह मानी प्रभु कह सिमरन होय सुभला प्रभु कह सिमरन सुफल फला

दान नियोलि कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमख कार्य शरीर कटावे तौ पी हम मैल न ध्यावे हर के नाम समसर कह नाहे नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे।

काजी पिहित मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पदद बहुमूच बहुत सियान पजाम का पहु ब्यापे अनक जतन कर त्रिसन ना तरापे भेख अनेक अगन नहीं बुझे कोट उपाव दरगह नहीं सिजे छूट सनाही उपयाल मुह ब्यापे माया जाल वर करतूत सगली जम जाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब दुह जाए नानक बोले सह सुपाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे।

जांत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुख देव जान सदा सदा पूलन हार नानक राखन हारे अपार रतन त्याग कौड़ी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो

कोह चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कहे गुनाहु नानक जो पाव का सही सुपाहु ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला।

ब्रह्म ज्ञानी तीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश ब्रह पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी केन्द्रीय सिद्ध अमृत बर सिंह ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।

ब्रह्म ज्ञानी किमित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी किंगत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी काम त्र पार नान, ब्रह्म ज्ञानी कव सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त

कान कई कोट खान यर खान कई कोट अकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरे हो पासार सदा सदा एक अंकार

पावे। अनक भोग बिख्या के करे नह द्रुपतावे, खब खब मरे बिना संतोख, नहीं को राजे सुपन मनोरथ वृथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख हुए बड़े भागी किसे प्राप्त हुए, करण कराम ने आपे आप सदा सदा नान कर जाम, करण कराम करने हार इसके हाथ कहाँ विचार।

दुखियार दीन। संत के निंदक कह सर्व रोग, संत के निंदक कह सदा विजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे तावस का पी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे कारण।

ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सोधी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन है निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिस की जानो त्रिस ना बुझे साध संग हर हर।

जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेव कव कहते डरे जैसा साथ ऐसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया सोदित सोदित सोदित सीजिया गुर प्रसाद तब सब जा जब देखो तब सब कह मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल नह कह जन्मे नह कह मरे आपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्टान दृष्टाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राचे था पीव थाप अविनाशी नाहि के

त्यापुर मान मूर्ख काहे बेलाई प्रभ लिखे का लिखिया पाई दुख सुख प्रभ देवन हार व्रते आंग तू दिसे जतार जो काशे करे सोई सुख मान भूला काहे प्रिय जान कौन बस्त आई तेरे संग लभत रहे ओ रस लोभी पतंग

ब्रह्म रंग रहता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक कहे आव नहीं कह परम सहस सियान प्रलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेख तो पनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेट।

प्रभु की दृष्टि महा सुख हो हर रास पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डुलाने।

पूर्ण गुरमंत साधु संग प्रभु देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास रोग सरगुण निर्गुण निंकार सुन समाधि आपन किया नानका आपे ही फिर जा बसपति जब अकार हो कह न दृढ़ चेता पापन तब कहते होता जब तारी आपन सुन संभाव तब वैर विरोध के संकवाद जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत

बंद मुक्त कहो किस कहो गणी। जब एक के हरग में उपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सही सुपाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप हे आप अपनी जो तरे तब कम निडर कमन कद डरे। अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अग में अपार। अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभु कहा तब चित्र गुप्त केस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही ओ पर जा।

संसार नानक तेह जन को सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभे आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमर हो गोबिंद माने अंतर की उत्तर है चिंद आस अनित त्याग हो तरंग समझना की धूर मन बंग आव छोड़ बेनती करहो साध संग गण सागर तरहो हर धन के भर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद

सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पहार, सहस सियाणप लख होए ता इक ना चले नाल। किव सचिया रहोई है किव कूड़ा तुटै पाल,

तीरथ जगले जे तिस नदर न आवई तावात न पुछ के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सुजाई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया।

मन कोय मन्ना सुरतो हो वह मन बुद्ध मन्ना सगल्प मन की शुद्ध मन्ना ऐ मुँह चोटा न खाए मन्ना जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ना मार्ग ठाक न पाए मन्ना पात स्यों प्रगट जाए मन्ना मगना चल पंथ मन्ना धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय।

असंख्य जाप, असंख्य पाहो, असंख्य पूजा, असंख्य तप ताओ, असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंग जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंग सती असंग दातार, असंग सूरम भख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कमन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंग गड़बड़ त्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंग कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर

वसै मन माहे तथा भगत वसै के लोवा करे आनंद सच्चा मन सोय सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तथा खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत।

अभक्त भ्रक्त नास प्रकाश न चिंत सुनिंत लिख दिख लेख पेख टाह अगौ है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित्य सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग तरानं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग ज्योता सर्वंग मुक्ता सावर शांत त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अघा स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोतरे न पुत्र न सत्तर न मित्र न ताते न माते न जात न पात नर साकं हरी कै मितोमी कै सदैव प्रवाह अजाह अजाह भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमे सुल सलाम है समा सुल कलाम है के साहिब दिमाग है उसन चराग है के कामल करीम है के राज ग्रहीम है के रोजी दहंद है के राज ग्रहिंद है करीमुल कमाल के उसन जमान है गरीबुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हरासल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजल करीम है रजाय ग्रहीम है समस्तुल जबा है के साहिब ग्राह है के नरकंग प्रणास है भैसुल वास है के सर्वुल गवन है मेसुल रवान है तमामुल तमीज है समस्ल अजीज है परंग परमीश है समस्ल अधीश है देसुल लेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग के मित्तो अभंग है मदभार शांत त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुन गन मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुभव नाश मन मन प्रकाश गुन गन प्रणाम जल तन मुदाम अंशज अंग आसन अभंग उपम अपार गतमित उतार जल थल अमंड दिस सुपर्ण जल थल महन दिस व्यंत अनुभव अनाश त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाह ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणाम चिचर नाम अंशज गात अजना बात अनु चंज गात अनुरंज बात अटुट भंडार अठट वार आडीर धर्म अतटीर कर्म अन ब्रण आनंद दाता महन धरबोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है मै मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है खल कारण है सर्व उबारण है तीर्थ के तरण है जाके करण है मन मान है जग जान है सर्वंग भर है सर्व सर्वंग कर है सर्वपास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजप जप थप थप कृता कृत अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है अजबा कृत अमृत अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है नृपतापन है जप जापन है अगला कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हर्ता है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग शांत रूपे नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रे नमो इंद्र इंद्रे अनादक विभूते कलंकार रूपेलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांग बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रभंगी त्रकाले अनंगी अगामे एक श्री शांत अजय अलाय अपय अभय अपु अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अभेघ अनाम अकाम अघट अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अभंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात शांत नमस्ल प्रणामे समसल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्ल निवासे निर्गामंग विभूते समसल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सच दानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजायब गिमे हरियंग करियंग करीमल रिहिमे चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र भुगते स्वयं स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।
पाशाई तस्मै त्वा प्रसाद स्वये श्रावक शुद्ध समुसदान के देख प्रयोकार जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधातक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रती बिन एक रत्ती के माते मदंग जरे जर संग अनूप अवतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप लिप्त न्याव सीसना जात बिचारे ते भय तो काह पय भुपतंत को नागे हे पाए पधारे जीत भरै सब देश दिसान को बाज ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हस्त ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कान गवे नहीं जात बिचारे श्री बस श्री भगवान भजे बिन अंध को अंध के धाम सिधारे तीर्थ नहान दयादम दान सुसंजम ने मनेक बसेखा है वेद पुराण जमीन जमानस वेद पुराण कदेव करान जमीन जमान सबान के पिखा है पावन आहार जति जतार सब सुपचार हजार देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रतीबन एक ना लेखा है शुद्ध सिपाह दुरंद वाह सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत बंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री बस श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड्डे बरियार बिचारे सार की धार पशैया तोर दे समलिंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गडान को तोड़न हार सुबात ने चकचार रवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक ने एक सो एक दवैया दानव दे फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन गे ब पुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फिराया जग सत्र सभाय अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातव जाम त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नान गजात दान अनेक स्वंबर साज बराएंगे ब्रह्मेश्वर विषम विषन सची पतंत फसेजम फास बराएंगे जे नर श्री पद के प्र सहभग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दोलोचन मूंद कै बैठ जो भक्त्यान लगायो नात फिरियोलिया सास समंदरन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विज्ञान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सब बैस बितायो साज कहूँ सुन लिहो स्वभाव दिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो काहूल पाहन पूज तरव सिर काहूल लिंग गर लटकायो काहू लखरवाची दिशा मह काहू पिशा को शीस निभायो कहू भूतान को पूजत है पास को मृतान को भोजन धायो कूर क्रिया उर्जो सभी ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

कहूं सिमट पे हो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आजुगा रूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे, पुरख जमन पग भरे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो अकाल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो ही, दुष्ट छा शवाए सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्व ठावर मोह सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई, कृपा करी हम बर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलबिग सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शाय करता, श्री असुजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन बांचत फल पावै सोई, दुखना दसे बेअबद कोई अडल, सुने गुंग जो जाहे सुन सुना पावई, सुने मुड़ चित लाए चतुर्थ आवई, दुख दर्द पाव निकलना तिन्नर के रहा, हो जो जाकी एक बार चाओ पाई को कह चाओ पाई। संबत सतरा सहस पण जाए, अर्थ सहस पण तेन कह जाए, भाद्र सुधी अष्टमी रब वारा, तीर सदर ग्रंथ सुधारा सवैया,

दर्शन प्रसयाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक बसंत स्वर्ग लोक का है जितते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है। बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है। कौतक कोट तमाशे

0: सच्चा साहिश संभालियो। जिन की सोपार पाया को नान करते किए बात जो कुछ करना सो कर रहे हैं महला दूजा।
1: योग शब्द ज्ञान शब्द वे शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने भयो नानक का दास है सुनि नन्दे महला दूजा।

साहिब जी सतनाम धन वाहे गुरु जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निष्ठा

शलोक बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण है कौतक कोड तमाशया चेतना आवसना नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई था।

झूठ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिरै देवानिया शेर लगा जाम डंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरुदेव फिरै शैतानिया शेर लगा जम डंड ता पछुतानिया।

शैतान्या वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग दसा ही पातशाहियां दी जोत सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी विच बराजमान आदरणीय साध संगत जी बहुत वडभागे हो गुरु चरणा विच बराज के गुरु सवारियां तो गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो गुरु स्वरूप साध संगत जी जिस प्रकार आप सारी संगत नू पली प्रकार पता ही है कि स्थान दी परंपरा अनुसार जो अमृत वेले हजूर श्री मुख वाक आशीष रूप विच बख्शिश करदे हन उन्हां पवित्र पावन बचना दी कथा विचार दा समा है। सो अज दे श्री मुख वाक जो शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित शांति दे मुजस्मे धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दी रसना तो उचारण कीते हुए ए पवित्र पावन बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 707 अते कुछ भाग 708 ते सुशोभित है दर्ज है। सो गुरु स्वरूप साध संगत जी ए श्री मुख वाक साहिब सानू अक्सर ही प्राप्त हुंदा रहिंदा है। समय समय इन्हां पवित्र बचना दे सानू दीदार हुंदे हन हजूर असीस बख्शिश करदे हन लिहाजा सुन सुन के सुना सुना के

Also, मन्ने की गत कही ना जाए जी को कह पिछे पछोताई कागद कलम ना लिखन हार मन्ने कवे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सद मन्ने मुह चोटा ना खाए मन्ने जमके साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।

सो कर कहा जित वै सर्व समाले बाजे नाद अनेक संखा किते बावन हारे किते राग परि सो कहियन किते गावन हारे गावे तोनो पौन पणी वै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म बिचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावे जोत महावल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चतने आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाही हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर वेखै किता अपना जिव तिस्ती वड़ियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पात साओ सा पात साहेब नानक रहण रजाई मंदा संतोख सरम पत चोली त्यान की करे बपूता खिंथा काल कुवारी काया जो त्रिना प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भोत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद

सोदर रागा संहला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर तेरा कहा सो कर कहा जित वे सर्व समाले, वाजे तेरे नाद नेक संखा केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परिसो कहिया केते तेरे गावन हारे, गावन तुनो पवन पणि वे संतर गाव राजा धर्म दुआरे। गावन तुनो चित गुप्त लिख जानना लिख लिख धर्म विचारे।

ना काम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म रिथा जात रंग माया कह रहाओ जप तप संजम तरम न कमायाओ सेवा सा न जानिया हर रायाओ कहो नानक कम नीच करमा शरण परे की राखो शरमा सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जयकर कीर्ता खिया करते का हुए विचारो तत्कर गाव सोहिला सिवरिहो सृजनहारो तू गाभो मेरे निरभव का सोहिला हाउ वारी जित सोहिला सरासक हो रहाओ नित नित जी अड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना है कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार संबत सा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असी सड़िया जो हो वह साहब स्यो मेल कर कर इहो पहुंचाओ सरडे नित पवन सृणहारा सिमरी है नानक से दे अवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको बेस अनेक बाबा जयकर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ विश्व चसिया कड़िया पहरा तत्ती वारी माह हुआ सूरज एको रत अनेक नानक करते के ते वेस राग तनाश्री महला पहलाओ गगन में थाल रवचंद दीपका गगन में थाल रवचंद दीपक वने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्याण लो पवन चवरो करे सगल वन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खन्ना तेरी हारती अनहता शब्द बजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त न एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मैं जो ज्योत है सोए तिसदे चानण सब मैं चानण होहि गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योतिष भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोवित मनो अंध नो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंको होए जाते तेरे नाहि वासा रा गौढ़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बपरिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुरपाया मन हर लिव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वडाहे कर निडौत पुन वडाहे रहाओ साकत हर सा न जानिया तने अंतर होमै कंडाहे ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावे जमकाल सह सृजंडाहे हर जन हार हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर दो सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्राव तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवाओ करियो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहलकी वेला इहा खाट चलियो हर ला आ गए वसन सुहेलाओ औद कटै दिन सरणारे मन गुर मिलकाज सुवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मैं तरेहो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाही पी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आई सुई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सहजी बहुर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख वदाते शरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगै।

मोती ता मंदर उस रहे रत्नी तै होहे जड़ाओ कस्तूर कुंघू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूला बिसरै तेरा चितन आवै ना हो हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देख

आओ गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखै पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित्त न आवै नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित्त न आवै नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पवन पीहण अपे आओ चंद सूरज दोए गुफा न देखै

तू अंत सुखाई, जो तेरी शरणागती तिन लय छुड़ाई। नानक वे परवाहो है तिस तिल ना तुमाई, राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सब नाम भगतां की। कबीर के को अंकार सतगुर प्रसाद, उतर आय का तुम की ना। राम को नाम ना कबहू लीना, राम ना जपो कवन मत लागे। मर जाए बै को क्या करो अभागे, राम दुख सुख कर गए कूटम जीवाया। मरती बारिक सर दुख पाया, कंठ गैन तब करण पुकारा। कह कबीर आगे ते ना सुमारा, सुई कबीर जियो।

काया कमलानी कुवार कन्या जैसे करत सिंगारा क्यों रलिया मन बाज पतारा कागियों डावत पुजा पीरानी कह कबीरे कथा सुरानी सुही कबीर जी।

जब लग प्राणी तिसे सरे वो, जब लग घट में सासा, जे घट जाए ता पाओ ना जासी अर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर, चूकै तिसे प्यासा, हुक्मै बूझै चौपड़, खेले मन जिन ढाले पासा।

क्या तू सोया जाग आना तै जीवन जग सच कर जाना राउ जिन जियो दिया सूरज के अंबरावे सब

सहलो रंग तैसे मन में किया रोस मुझे अवगुण से नाही दोस तय साहब की मैं सार न जानी जो बन खोए पाछे पछतानी राव काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हौ बिरह जाली प्रेब हुन कतै सुख पाए जा होए कृपालता प्रभु मिलाए विदन खोही मुंदिया केली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मेली जा फिर देखा ता मेरा लोह बेली वाट हमारी खरी ओडीनी खन्यो तिखी बहुत पीणी उस उपर मार्ग मेरा सेख फरीदा पंथ सुमार सवेरा सुही ललता बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला भर सरवर जाबे उछले तब तरण दोहेला हाथ ना लाए कुसुम बड़ा जस जल जासी ढोला उरा एक आप ही ने पतली सह केरे बोला दुदा थनी ने आवी फिर होए ना मेला कह फरीद सहेलियो सहो साले सी अंस चलसी डूमड़ा ऐ तन ढेरी थीसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैरा काल मूर्त आजूनी सह भंग गुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौपदे घर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कमन वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहर न जाई तेरे गुण गावा दे बुजाई जैसे सच मह रहो रजाई राव जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब मैं अंदले क्या चतुराई क्या हूं कथी कथे कथ देखा क्या हूं कथी कथे कथ देखा मैं आ कथ ना कथ ना जाई जो तुद भावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई इते कुकर हों बेगाना पौका इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खस मैं ना हो ना जाई बुलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर काट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म नयावा मन बेदया दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पुराई हम नाही चिंत पुराई राव अगम अगोचर लाखे अपारा चिंता करो हमारी जल थल मई अल पर पुरलीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवरना जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे जी जनसा सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद भावे सोई चंगा एक नानकी अरदासे बुलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे तान तू दाता नाम परवान

सदा सद बैरागण हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली। अकथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ गम्य गोचर दे दिखाए बिन गुर करणी क्या कार कुमाए। हौमे मेटा चलै गुर शब्द समाए मनमुख विछड़ै खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास। हर कृपा धारी दासन दास जन नानक नाम धन दास। बुलावल महला तीजा अंकार पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटांब सहत स्यों जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवै अहला जन्म गवाया। दूजा पाहो ना दे लिव लागन जिन हर कै चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरा तिन कै तै दुख निवारे। तू दयाल दया पत दाता क्या ए जंत विचारे। मुगत बंद सब तुझते होए ऐसा या।

अंतरलह लुमाल प्राणी सो प्राव चेतन आवे सा संग सो रंग संग न किया बोझोनी दुख पावे चिंज हार सारा मित्रा एक निफ न लगो ध्यान कौना प्राणी तिजे पैरे व्यक संचे अंध ज्ञान चौथे पैरान के ध्यारा मित्रा दिन नेड़े आया सोए गुना समाज जा मित्रा तेरा दर के बेली होए गुना समाल प्राणी अंते

गोविंद का बंजारा मित्रा उड़ चले कमाना साथ एक रती बिन मनावा देव जारिया मित्रा ओने तकड़े पाए हाथ लिखया आया पो

चरण कमल कर बोध करते सहजा दोग ना व्यापे गुरपुरा भेटे वटपागी आठ पै पर जापे आज गाती से स्वामी भगता नाम अधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिना चोट बजारे मन प्यारिया जो मित्र हर लदे खेब सवली मन प्यारे जो मित्र हर दर ने चल मली हर दसे वे अलग बेवे ने चले आसन पाया

जशो न चले दुख रोए। जा नानक नाम त्याया हर जन तीस गाई होए, मार बिन और ना कोई।

परम चुकाया। नानक सतगुर ऐसा जानिया जो सब सैल मिलाए जी हो, सतगुर मिलिया फल पाया जिन्हें विचों अह कारण चुकाया।

छिंज ना नचऊ, नानक अवसर लद्दा भाल जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला, पहरे कर पहला। पहले पहरे रहण के बन जा रहा मित्राओ, हुक्म पया कर पास। उर्द तप अंतर करे बन जा रहा मित्राओ, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास।

सार हंस उल थड़े आए, जोवन कटै जरुआ जणै बण जा रिया मित्रा, आव कटै दिन जाए।

बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंत करारा पूरा सतगुर कभू ना सेवया सिर ठाडे जम जंदारा धर्म राय जब पकर सबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोवन लहरी।

सात भाय बन बने आग अवगाहे निर्गुण सरगुण हर गुण मेरा कोई है जियो जियो आन मलावे जियो।

इनमें सात नया वेजियो नेक बर किए जप तपा गवन किया धरती परमाता एक हृदय सात नया वे

संत खेले तुम संग गपाला, अपने संतों द खरे प्यारे तू संतन के पराना जियो। हुन संतन के मेरे पन मन करवाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिनके संग सदा सुख पाया।

जो ना निरहमी तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्र तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम्हें संग माली ना जियो जो बारक पी खीर पकावे न्यू निर्दन ता देख सुख पावे देखा वांझल भी ठंडा तुम्हारा हर रंग संग

तू जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होय गुप्त प्रगट वरते सब ताई ज्योति ज्योत मिलावण्या तिसनागण जड़े संसारा लोभिमान बहुत अंकारा मर मर जन्मे पर।

सच्चे धारे वडभागी दर्शन पावणिया रहाओ साधक सिद्ध जिसे को फिरदे ब्रह्म इंद्र ध्यान हिरदे कोट।

संजापाय जिन पिया से त्रिपता से सच्चे सच अगाम्य तिस कर सहजा तिस कर सहजा सोई सुहिला आनंद विनोद करे सद केला सो तनवंता सो वड़ साहा जो गुर चरनी मन लावणिया पहलो दे तै रिजक समाहा।

सेव संत साधके सगल मनोरथ पूरे काट काट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की धूरे सब छडाई खासम आप हर जप पई ठरूरे करते किया तपापसो दुष्ट मुए होए।

कर चौथा एक ओंकार सतगुरु साध किरत कर्म के भी छिड़े कर कृपा मिल हो राम चार कुंट दिस भ्रमै थक

ते चिर ज्योति विच तू बोलह बिन ज्योति कोई किछ करहो। दिखा सियाणीए नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुझाणीए पौड़ी। तुद आपे जग दो पाए कै तुद आपे धंधे लाया मोह ठगोली पाए कै तुद आप हो जगत खुआया। तिसना अंदर अगन है नै तिपतै भुखा त्याया सहसा यो संसार है मर जमे आया जाया। बिन सतगुरु मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई सुख रजा जां तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जिणेंदी माया सोभा सुरत सुहावनी जिन हर सेती चित

कथना भरिया पर पर धोवा आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा होए कै दसे राह सब समुहाए साथ है अगे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापै पौड़ी महारुति सब तू कड़ी मूरत विचारा तू गणते किने न पायो सच्चे अलख अपारा पढ़िया मूर्ख आखिए जस लाभ लोभ अहंकारा नाउ पढ़िए नाउ बुझिए गुरमत्ति विचारा गुरमत्ति नाम तन खटिया भगती भरे भंडारा।

गंढ पवे संसार राजा मंगे दित्ते गंढ पाए भुख्या गंढ पवे जा खाए काला गंढ नदियां मीह झोल गंढ प्रीति मिठे बोल बेदा गंढ बोले सच कोय मोया गंढ नेकी सत होए ईत गंढ वरते संसार

निकट कर तिसनो जान। प्रभ की आज्ञा सत कर मान, गुर के बचन मिटावो आप। हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। गुर का बचन सदा अविनाशी, गुर के बचन कटी जम फासी। गुर का बचन जी कै संग, गुर के बचन रचे राम कै रंग। जो गुर दिया सुमन कै काम, संत का किया सत कर मान रहाओ। गुर का बचन अटल शीद, गुर के बचन कटे भ्रम भेद। गुर का बचन कतहु ना जाए, गुर के बचन

राख गुर का शब्द अमृत रस चाख अवर जतन कहो कौन काज कर कृपा राखे आप लाज क्या मानुख कहो क्या जोर झूठा माया का सब सोर कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी।

उन दुख सहाम। जो सुपने हुए बैसत राजा, नेत्र पसारै ता निरार्थ काजा। ज्यों राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसके पाले कछु न पड़ै। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दिनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप करे रास, नानक

अगन निवारी। सतगुर भेटत होमै मारी, सतगुर संग नाही मन डोलै, अमृत बाणी गुरमुख बोलै, सब जग साचा जा सच में राते, शीतल शांत गुर ते प्रभ जाते रहाओ, संत प्रसाद जपे हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सकल दुख मिटै, संत प्रसाद बंधन ते छुटै, संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध लेण मज्जन सबता।

दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ सहज सुख आनंद निदान राखण हार रख ले निदान दुख दर्द बिनसे पै भरम आवन जान रखे कर कर्म पीखे बोले सुने सब आप।

जाई कोना जिस मस्तक लेख लखाए सुहेद खजाने हैं लिया रुलाए गौड़ी महला पंजमा डर डर मते जब जानिए दूर डा चूका देखिया भरपूर सतगुर अपने को बल जहारे छोड़ न जाए सर परतारे रहो दुख रोग सो बिसरे हे जब नाम सदा न जा हर गुण गाम बुरा।

सामका जापे ताको काड़ा कहा व्यापे सहनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर आए रहो जाके चिंत बसे मन आए ताको चिंता का तू नाहे जाके बिनसियो पामत परमा ताके कछु नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरनामा कौन आन ताके सर निदाना गौड़ी महल्ला पंजमा।

गौड़ी महल्ला पंचमा। कामना रूप तेरा राधो कमन जो काया लै साधो, कमन कौन जो कोई लह गावो, कमन बोल पार मारी जावो रहाओ। कमन सुपूजा तेरी करो कौस बे जित पव जल तरियो, कौ तप जे तपिया होए कौस नाम होमी मल कोई, गुण पूजा

त्यागी अमोदन सवल त्यागी वह सवल बरन मीठा और ताके महबूठा डिठा उस दादा गुरु करतार दीपना नान गोर अदार गौड़ी महला पंजमा ये मन मेरे तू ताको वाहे जा कहू ना कछू नाहे हारू सब प्रीतम कर मन मी

एक सुझा का मन रहता हो बेती से प्राई रहता हो नदी से कोई कर्ण ग्राउंड करता सोई रहो मन सुमावे कमावे मुखार हार बोले सो जाने उतकते ना डोले जा गया ता सो सच साहो गोर पूरे कर दीनो साहो।

मन माही ताको दुख रो सुपने भी नाही राहो सरदा राखे हे जन माही ताके संग किल भगत हो जाए जानकी महिमा कत न जाए पाप रंजा रे असमाए कर कृपा प्राभि नौकर नीजे दास की तूर नानक को दीजे गौरी महला पंजमा हर सिमर तेरी जाय बलाय सर्व कल्याण वसे मन आए पैमा मेरे एको नाम जीत रे गया वे काम राव रहन जिस गुण का उन्नता और पूरे कि निर्मल मन

तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मेरे साधु हर नाम त्याई राव दुर्दे हुई परवान सब के पाया नाम निशान हार सिमर उन पद पाया साह मटाया जात का देखो ता दरिया सुमाए नान दास हर विसरण आए गौड़ी मल्ला पंचमा गौर जी के दर्शन को बल जाऊं जप जप जीवा सत गुर नाऊ पार ना पूरे गुरदेव कर कृपा लागो तेरी सेव राहो

जीव है परमानंदा काम रो मधुखोय साग साग दिल बुझा खो तो कार्य बाबा दीन दयाला नानक दे जय सारो वाला गौड़ी मोहला पंजवा जय का दिया पहने खाए जैसे वाल से कोई मैंने नमाए कसम सा आन काम लागे कौटी बल रतन त्यागे रहाओ

जय पा जाइए ता नाम नाल मेरा स्वामी नानक को मिल आया तुर जामी गौड़ी महला पंजमा जो प्राणी गोविंद आवे पढ़िया अन पढ़िया पंगु पावे सब सिमर गोपाल नाम झूठा तन माल रहाओ रूबा सोचो सियाना जिन जानिया मान्या प्राव का पान जाग में आया सो भगवान करा रे अपना स्वामी जान को ना जाके पुन पाग अचानी था कमा लाग गोड़ी मल्ला पंजमा हर के दास सुरा नहीं संग जो

संग मिट जात विकार सतगुरु जी उपकार प्रेम भगत राधे गोपाल नान सच सरवाल गौड़ी मल्ला पंजमा ऐसी पीत गुमेश लागी मेल लय पूर्ण बट पागी राहो।

प्रयापो आपन कमाइए आपे बाप बाधे दर्व गया साहब जी कह साते नार साहब प्रवे रे दरबार राखी पाए मेरे करतार गौड़ी मल्ला पंजमा जानकी तुर मन मिठ कटानी पूर्व कर लिखिया तुर प्राणी राओ अब मानो पूर्व बधाई साधु कर साधु।

मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई मोर मला भजा निर्मला गुरदेव पूर्ण सेव रहाओ शीतला रखा बिहारी कृपा धारी नानक नाम जपो जीवे साध हरा मल पीवे मोर मला भजा तन मस्त तन तेरे ने तो तन भजन तुम संग हे तो नाम बिना कैसे सुख लइए रसना राम नाम जस कहिए राव।

साधन साधे अनेक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसना गादे सिम साध वेद बखाने जो ज्ञान से सुख जाने नाम जपत प्रभ स्यों मन माने।

काम दस देशे मन पे जन्म जन के किरब गए कौन नानको पैबाई अपने सेव आप रखाई गौड़ी मल्ला पंजा अपने सेव को आप साई नित पतपारे बाप जैसे माई प्रभु किसान उपरे सब कोई कनकर।

सुंदर नाही आर द्वार नट पंगोरिया दीना नाथ नाथ करना मैं साजे मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गया नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बरागर महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गुसाई मितला तू संग हमारे बास जियो राव तो मैं करी ना जीवना ते रहना संसार जी प्राण सुधा त्या निमक निम बलिहार जी हस्त अलंबन द्यो बराग कर त्यो ओ दुर्गपाल मोह निर्गुण मत बथोड़िया तू सद ही दीन दयाल का सो तेरे समला कौन भी दे विचार संसमय दास तुचे अगाम पार सबदार रस सिद्ध ठाम नाम मां रसमाए सुपसन पे केसवा से जान हर गुण गाए मात पिता सुबंध पो तू मेरे प्राणदार सा सा नानक भजे मैं तरिया संसार गौड़ी महल बरागन रोए की छंद के कर महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

देता, काठ के पुत्री कहाँ करे बोपरी, कलावन हारो जाने जैसा पे करावे, बाजीगर हो तैसो ही साज जाने अने

मान आ गया सर्व सुख पाए, दुख है ठाउ गवायो। जौ सो प्रसन्न पै प्रभु ठाकुर प्रभु, जौ सो प्रसन्न पै प्रभु ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो। ना किछ आवत ना किछ जावत, सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत के